0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो
2: आना है
3: पाइन अवेन्यू 5
2: आना है
3: एमसी वंजा

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: डन मिलिंस एंटरटेनमेंट Smart for now, mama's boy, trad nigga. Cheer, yeah.
3: Rosie, the beat, killer.
2: Hey, Bapatin poor rod. I'm in a Bapatin poor rod. I'm in a Bapatin poor rod for his love and grace upon your life, boy, holla.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो और रेडियो
2: और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो